ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 15 मई शुक्रवार रात 11:30 बजे वायला कावानो और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने शुक्रवार दोपहर को प्रीति भोज पर मुलाकात की। ट्रंप शुक्रवार को ही अपनी चीन यात्रा संपन्न कर अमरीका लौट जाएंगे। दोनों नेताओं ने मध्यवर्ती बीजिंग में स्थित जोंग नानहाई परिसर में मुलाकात की, जहां चीनी नेताओं के कार्यालय स्थित हैं। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि बृहस्पतिवार को शिखर बैठक के दौरान ट्रंप और शी ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें चीन में अमरीकी व्यवसायों के लिए व्यापक पहुंच और अमरीका में अधिक चीनी निवेश शामिल है। चीन का कहना है कि व्यापार वार्ता में प्रगति हुई है। फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि शी ने 200 बोइंग जेट विमानों का ऑर्डर देने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने शी के हवाले से कहा कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला देखना चाहते हैं और वे ईरान को सैन्य उपकरण उपलब्ध नहीं कराएंगे। ट्रंप ने इसे एक बड़ी बात बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि शी ने इस बात पर जोर दिया कि ताइवान का मुद्दा चीन अमेरिका संबंधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शी ने चेतावनी दी कि अगर इस मुद्दे में लापरवाही बरती गई तो दोनों देशों के बीच टकराव और यहां तक कि संघर्ष भी हो सकता है, जिससे समग्र संबंध गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका की घोषणा में ताइवान का उल्लेख नहीं किया गया। जापान सरकार प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर बैठक के बारे में फोन पर बातचीत कराने की व्यवस्था कर रही है। सरकार चाहती है कि ये बातचीत ट्रंप के शुक्रवार को पेइचिंग से रवाना होने के बाद हो। जापान सरकार के एक सूत्र का कहना है कि टोक्यो ये जानने के लिए उत्सुक है कि अमरीका और चीन ने ताइवान जैसे क्षेत्रीय मुद्दों तथा दुर्लभ धातुओं पर चीनी निर्यात प्रतिबंधों के संबंध में क्या चर्चा की। एनएचके को पता चला है कि जापान के रक्षा मंत्रालय ने फिलीपींस को सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों के निर्यात के उद्देश्य से एक अध्ययन शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार मनीला ने इस महीने की शुरुआत में टाइप 88 मिसाइलों को हासिल करने में अपनी रुचि व्यक्त की थी। सूत्रों ने आगे बताया कि मंत्रालय थल आत्मरक्षा बल GSDF के मौजूदा शस्त्रागार से इन मिसाइलों के निर्यात पर विचार कर रहा है। GSDF टाइप 88 मिसाइलों का उपयोग उत्तरोत्तर बंद कर उन्हें एक नए मॉडल से बदलना चाहता है। टाइप 88 मिसाइलों की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। SDF कर्मियों ने अप्रैल से मई तक फिलीपींस में आयोजित एक अभ्यास में इस मिसाइल का उपयोग किया था। अमरीकी सेना ने भी इसमें भाग लिया था। यूक्रेन के आपात अधिकारियों का कहना है कि बृहस्पतिवार तक रूस द्वारा किए गए व्यापक हमलों में राजधानी कीव में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय आपात सेवा ने शुक्रवार को मृतकों की नई संख्या की घोषणा की। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि देश पर किए गए रूसी हमलों में 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें शामिल थीं। कीव के दारनित्स्की इलाके में एक मिसाइल हमले में एक अपार्टमेंट इमारत नष्ट हो गई। पुलिस और बचावकर्मी मलबा हटाते और लापता लोगों की तलाश करते देखे गए। रूस का कहना है कि ये व्यापक हमले जवाबी कार्रवाई थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि उसने यूक्रेनी बलों के काम आने वाली ईंधन एवं परिवहन अवसंरचना तथा अन्य लक्ष्यों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान सरकार ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत किसी मामले की पुनः सुनवाई शुरू करने के अदालती फैसलों के खिलाफ अभियोजक बुनियादी तौर पर अपील नहीं कर सकेंगे। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में दंड प्रक्रिया संहिता के मसौदा संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत अभियोजक तभी अपील दायर कर सकेंगे जब उनके पास ऐसा करने का ठोस आधार होगा। इस विधेयक के तहत अभियोजकों को बिना विलंब ये खुलासा करना होगा कि क्या उन्होंने अपील दायर की है और अगर की है तो क्यों। अपील दायर होने पर अदालतों को एक वर्ष के भीतर ये तय करना होगा कि अपील स्वीकारी जाए या नहीं। इस विधेयक में एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों को दोबारा सुनवाई के अनुरोधों के कारणों से संबंधित साक्ष्यों का खुलासा करने के लिए अभियोजन पक्ष को आदेश देने का अधिकार होगा। विधेयक के मसौदे में ये भी कहा गया है कि न्यायाधीशों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभियोजकों द्वारा पेश साक्ष्यों का दायरा संकीर्ण न हो। सार्वजनिक किए गए साक्ष्यों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उल्लंघन करने वालों को एक वर्ष तक की कारावास की सजा या 5,00,000 येन यानी करीब $3,100 तक का जुर्माना हो सकता है। मसौदे में संशोधित कानून के लागू होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर हर 5 साल में एक बार समीक्षा किए जाने का आह्वान किया गया है। होंडा मोटर को वित्त वर्ष 2025 में भारी सामूहिक घाटा हुआ है जिसका मुख्य कारण कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन रणनीति में संशोधन है। इस जापानी वाहन कंपनी का कहना है कि सार्वजनिक होने के बाद से ये पहली बार है जब उसकी वार्षिक आय में घाटा हुआ है। वित्त वर्ष 2025 के लिए परिचालन घाटा 414.3 अरब येन यानी $2.6 अरब रहा। शुद्ध घाटा 423.9 अरब येन रहा। होंडा को सबसे अधिक नुकसान ईवी योजनाओं को रद्द करने, ईवी मॉडलों को बाजार में न उतारने और उत्तर अमेरिका में परियोजनाओं को रोकने के फैसले से हुआ है। अमेरिकी शुल्कों का भी कंपनी के मुनाफे पर बुरा असर पड़ा। होंडा का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में उसे लाभ होने की उम्मीद है। सुजुकी मोटर का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 439.2 अरब येन यानी लगभग $2.8 अरब पहुंच गया। भारत में मजबूत बिक्री इस उछाल के प्रमुख कारणों में से एक रही। जापान की इस वाहन निर्माता कंपनी ने बृहस्पतिवार को मार्च में समाप्त कारोबारी वर्ष के वित्तीय परिणाम घोषित किए। कंपनी ने बताया कि आमदनी बढ़कर लगभग 63 खरब येन यानी लगभग $40 अरब रही, जो वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 8% अधिक है। शुद्ध लाभ में 5.6% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि न केवल सुजुकी के मुख्य बाजार भारत में बल्कि जापान, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों में भी मोटर वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी के कारण हुई। कंपनी अध्यक्ष सुजुकी तोशिहिरो ने कहा कि पश्चिम एशिया में स्थिति बेहद अनिश्चित है, लेकिन मोटर वाहनों के उपयोग के तरीके में बड़े बदलाव आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी को इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए तुरंत कदम उठाने चाहिए।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 11वें पाठ में हम पूछना सीखेंगे कोई चीज उपलब्ध है या नहीं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। आज वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ आसाकुसा आई है। दोनों सेंसोजी मंदिर तक जाने वाली मुख्य गली नाकामिसे दोरी में उपहार बेचने वाली दुकानें देख रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 11वें पाठ की बातचीत।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने ताम से कहा,
2: कोनो टी-शर्ट मीते?
1: ये टी-शर्ट देखो,
3: निंजा ते काइतारु,
1: निंजा लिखा हुआ है।
0: ताम ने टी-शर्ट की तरफ देखकर कहा,
3: आ, निंजा!
1: अरे वाह, निंजा!
0: फिर दुकानदार की आवाज आई,
4: इराशाइमासे,
0: आइए आइए।
1: ताम ने दुकानदार से पूछा,
3: सुमिमासे, ओमामोरी वा अरिमासु का?
1: माफ कीजिए, तावीज है।
0: दुकानदार ने जवाब दिया,
4: चोट्टो कोको नी वा अरिमासेन ने,
0: यहाँ तो नहीं है।
1: फिर मिया ने ताम को बताया,
2: ताम, ओमामोरी वा ओतेरा नी आरियो।
1: ताम, तावीज मंदिर में मिलते हैं।
0: उसके बाद ताम ने पूछा,
3: ओतेरा देस का?
1: मंदिर में?
0: फिर मिया ने कहा,
2: इकिमाशो,
1: चलो।
0: दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जापानी तावीज क्या होते हैं। जापानी भाषा में इन्हें ओमामोरी कहते हैं। ये आमतौर पर शिंतो और बौद्ध धर्म के मंदिरों में मिलते हैं। इन्हें शुभ माना जाता है और लोग ये मानते हैं कि ये मुसीबतों से बचाते हैं।
1: दोस्तों, अब एक बार फिर सुन लेते हैं आज की बातचीत।
2: कोनो टी-शर्ट मीते, निंजा ते काइतारु।
3: 忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: ओमामोरी वा अरिमासु का,
1: यानी तावीज है। इसे याद करके आप पूछ सकते हैं कि जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो है या नहीं।
0: इस वाक्य में
5: ओमामोरी
0: का अर्थ है तावीज। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है,
5: अरिमासु
0: है क्रिया
5: अरु
0: यानी होना का मास रूप, और उसके बाद लगा है का, जिससे वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि खरीदारी करते समय जो चीज आप ढूंढ रहे हो उसके नाम के बाद लगाना है कारक वा, और उसके बाद बोलना है
5: अरिमासु का।
0: तो सुनिए और दोहराइए,
5: अरिमासु का, ओमामोरी वा अरिमासु का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी पर्यटन केंद्र में कुछ ढूंढ रहा है।
6: すみません, 地図はありますか?
7: はい, こちらです।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले पर्यटक ने पूछा,
6: すみません, 地図はありますか?
0: माफ कीजिए, नक्शा है?
1: यहाँ
5: चीज़
1: का अर्थ है नक्शा।
0: कर्मचारी ने उत्तर दिया,
7: हाई कोचिरा देस।
1: जी ये रहा।
0: अगर वो चीज उपलब्ध ना हो तो शायद आपको
5: अरिमासेन
0: यानी नहीं है जैसा सीधा उत्तर नहीं बल्कि थोड़ा घुमा फिरा कर जवाब मिलेगा, जैसे
5: चोटो
0: यानी जरा, या माफी मांगते हुए
5: सुमिमासेन
0: यानी माफ कीजिए।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
5: चिज़ु वा अरिमासु का? सुमिमासेन, चिज़ु वा अरिमासु का?
1: अब मान लीजिए आप जापान की कोई यादगार चीज खरीद कर ले जाना चाहते हैं और जापानी हाथ का पंखा ढूंढ रहे हैं।
0: हाथ के पंखे को जापानी भाषा में कहते हैं
5: सेंस, सेंस।
0: तो वाक्य में पहले सुमिमासेन लगाकर पूछने की कोशिश कीजिए।
7: सुमिमासेन, सेंस वा अरिमासु का? सुमिमासेन, सेंस वा अरिमासु का?
1: अब मान लीजिए कि आप पूछना चाहते हैं कि निंजा टी शर्ट है या नहीं। टी शर्ट को कहते हैं
5: टी शर्ट।
1: निंजा टी शर्ट बोलने के लिए बीच में कारक नो लगाकर बनेगा
5: निंजा नो टी शर्ट, निंजा नो टी शर्ट।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: すみません。 निंजा नो टी शर्ट वा अरिमासु का? すみません。 निंजा नो टी शर्ट वा अरिमासु का?
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की। आप भी याद कर लीजिए।
8: いらっしゃいませ।
5: いらっしゃいませ
1: का अर्थ है आइए आइए या स्वागत है। जब भी कोई ग्राहक किसी दुकान में जाता है उसका इस अभिवादन से स्वागत किया जाता है।
0: तो इसे अलग अलग आवाजों में सुन लेते हैं।
9: いらっしゃいませ।
10: いらっしゃいませ।
11: いらっしゃいませ।
1: और अब एक बार फिर सुनते हैं आज की बातचीत।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
8: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
5: トラベルガイド।
0: अब समय है अंश घूमे मिया के साथ का। आज हम बताएंगे टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल आसाकुसा के बारे में जहां ताम मिया के साथ गई थी।
1: आसाकुसा टोक्यो के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। वहां कामिनारी मोन है जो सेंसोजी मंदिर का प्रवेश द्वार है। बड़ी सी लाल कंदील उस द्वार की पहचान है। वहीं से मुख्य भवन तक की 250 मीटर लंबी नाकामिसे गली शुरू हो जाती है जिसके दोनों ओर बहुत सारी दुकानें हैं।
0: इन दुकानों में उपहार, मिठाइयां और दूसरी तरह तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे हाथ से बने चावल के गर्मा गर्म पापड़ या आजुकी दानों के मीठे पेस्ट से भरी निंग्यो याकी। वहाँ टी शर्ट, हाथ के पंखे और चॉपस्टिक्स भी मिलते हैं।
1: नाकामिसे गली के अंत में सेंसोजी मंदिर का मुख्य भवन है। टोक्यो स्काईट्री भी पास ही है, वहाँ पैदल जा सकते हैं।
0: बहुत सारे पर्यटक इन दोनों जगहों पर एक ही दिन में जाते हैं। आपको अगर मौका मिले तो इस क्षेत्र में टहलने का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम मंदिर से तावीज खरीदेंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 15 मई शुक्रवार रात 11:30 बजे वायला कावानो और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने शुक्रवार दोपहर को प्रीति भोज पर मुलाकात की।

ट्रंप शुक्रवार को ही अपनी चीन यात्रा संपन्न कर अमेरिका लौट जाएंगे। दोनों नेताओं ने मध्यवर्ती बीजिंग में स्थित जोंग नानहाई परिसर में मुलाकात की, जहां चीनी नेताओं के कार्यालय स्थित हैं। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि बृहस्पतिवार को शिखर बैठक के दौरान ट्रंप और शी ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें चीन में अमरीकी व्यवसायों के लिए व्यापक पहुंच और अमरीका में अधिक चीनी निवेश शामिल है। चीन का कहना है कि व्यापार वार्ता में प्रगति हुई है। फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि शी ने 200 बोइंग जेट विमानों का ऑर्डर देने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने शी के हवाले से कहा कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला देखना चाहते हैं और वे ईरान को सैन्य उपकरण उपलब्ध नहीं कराएंगे। ट्रंप ने इसे एक बड़ी बात बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि शी ने इस बात पर जोर दिया कि ताइवान का मुद्दा चीन अमरीका संबंधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शी ने चेतावनी दी कि अगर इस मुद्दे में लापरवाही बरती गई तो दोनों देशों के बीच टकराव और यहां तक कि संघर्ष भी हो सकता है, जिससे समग्र संबंध गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। अमरीका की घोषणा में ताइवान का उल्लेख नहीं किया गया। जापान सरकार प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर बैठक के बारे में फोन पर बातचीत कराने की व्यवस्था कर रही है। सरकार चाहती है कि ये बातचीत ट्रंप के शुक्रवार को पेइचिंग से रवाना होने के बाद हो। जापान सरकार के एक सूत्र का कहना है कि टोक्यो ये जानने के लिए उत्सुक है कि अमरीका और चीन ने ताइवान जैसे क्षेत्रीय मुद्दों तथा दुर्लभ धातुओं पर चीनी निर्यात प्रतिबंधों के संबंध में क्या चर्चा की। एनएचके को पता चला है कि जापान के रक्षा मंत्रालय ने फिलीपींस को सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों के निर्यात के उद्देश्य से एक अध्ययन शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार मनीला ने इस महीने की शुरुआत में टाइप 88 मिसाइलों को हासिल करने में अपनी रुचि व्यक्त की थी। सूत्रों ने आगे बताया कि मंत्रालय थल आत्मरक्षा बल GSDF के मौजूदा शस्त्रागार से इन मिसाइलों के निर्यात पर विचार कर रहा है। GSDF टाइप 88 मिसाइलों का उपयोग उत्तरोत्तर बंद कर उन्हें एक नए मॉडल से बदलना चाहता है। टाइप 88 मिसाइलों की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। SDF कर्मियों ने अप्रैल से मई तक फिलीपींस में आयोजित एक अभ्यास में इस मिसाइल का उपयोग किया था। अमरीकी सेना ने भी इसमें भाग लिया था। यूक्रेन के आपात अधिकारियों का कहना है कि बृहस्पतिवार तक रूस द्वारा किए गए व्यापक हमलों में राजधानी कीव में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय आपात सेवा ने शुक्रवार को मृतकों की नई संख्या की घोषणा की। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि देश पर किए गए रूसी हमलों में 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें शामिल थीं। कीव के दारनित्स्की इलाके में एक मिसाइल हमले में एक अपार्टमेंट इमारत नष्ट हो गई। पुलिस और बचावकर्मी मलबा हटाते और लापता लोगों की तलाश करते देखे गए। रूस का कहना है कि ये व्यापक हमले जवाबी कार्रवाई थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि उसने यूक्रेनी बलों के काम आने वाली ईंधन एवं परिवहन अवसंरचना तथा अन्य लक्ष्यों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान सरकार ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत किसी मामले की पुनः सुनवाई शुरू करने के अदालती फैसलों के खिलाफ अभियोजक बुनियादी तौर पर अपील नहीं कर सकेंगे। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में दंड प्रक्रिया संहिता के मसौदा संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत अभियोजक तभी अपील दायर कर सकेंगे जब उनके पास ऐसा करने का ठोस आधार होगा। इस विधेयक के तहत अभियोजकों को बिना विलंब ये खुलासा करना होगा कि क्या उन्होंने अपील दायर की है और अगर की है तो क्यों। अपील दायर होने पर अदालतों को एक वर्ष के भीतर ये तय करना होगा कि अपील स्वीकारी जाए या नहीं। इस विधेयक में एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों को दोबारा सुनवाई के अनुरोधों के कारणों से संबंधित साक्ष्यों का खुलासा करने के लिए अभियोजन पक्ष को आदेश देने का अधिकार होगा। विधेयक के मसौदे में ये भी कहा गया है कि न्यायाधीशों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभियोजकों द्वारा पेश साक्ष्यों का दायरा संकीर्ण न हो। सार्वजनिक किए गए साक्ष्यों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उल्लंघन करने वालों को एक वर्ष तक की कारावास की सजा या 5,00,000 येन यानी करीब $3,100 तक का जुर्माना हो सकता है। मसौदे में संशोधित कानून के लागू होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर हर 5 साल में एक बार समीक्षा किए जाने का आह्वान किया गया है। होंडा मोटर को वित्त वर्ष 2025 में भारी सामूहिक घाटा हुआ है जिसका मुख्य कारण कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन रणनीति में संशोधन है। इस जापानी वाहन कंपनी का कहना है कि सार्वजनिक होने के बाद से ये पहली बार है जब उसकी वार्षिक आय में घाटा हुआ है। वित्त वर्ष 2025 के लिए परिचालन घाटा 414.3 अरब येन यानी $2.6 अरब रहा। शुद्ध घाटा 423.9 अरब येन रहा। होंडा को सबसे अधिक नुकसान ईवी योजनाओं को रद्द करने, ईवी मॉडलों को बाजार में न उतारने और उत्तर अमेरिका में परियोजनाओं को रोकने के फैसले से हुआ है। अमेरिकी शुल्कों का भी कंपनी के मुनाफे पर बुरा असर पड़ा। होंडा का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में उसे लाभ होने की उम्मीद है। सुजुकी मोटर का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 439.2 अरब येन यानी लगभग $2.8 अरब पहुंच गया। भारत में मजबूत बिक्री इस उछाल के प्रमुख कारणों में से एक रही। जापान की इस वाहन निर्माता कंपनी ने बृहस्पतिवार को मार्च में समाप्त कारोबारी वर्ष के वित्तीय परिणाम घोषित किए। कंपनी ने बताया कि आमदनी बढ़कर लगभग 63 खरब येन यानी लगभग $40 अरब रही, जो वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 8% अधिक है। शुद्ध लाभ में 5.6% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि न केवल सुजुकी के मुख्य बाजार भारत में बल्कि जापान, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों में भी मोटर वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी के कारण हुई। कंपनी अध्यक्ष सुजुकी तोशिहिरो ने कहा कि पश्चिम एशिया में स्थिति बेहद अनिश्चित है, लेकिन मोटर वाहनों के उपयोग के तरीके में बड़े बदलाव आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी को इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए तुरंत कदम उठाने चाहिए।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 11वें पाठ में हम पूछना सीखेंगे कोई चीज उपलब्ध है या नहीं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। आज वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ आसाकुसा आई है। दोनों सेंसोजी मंदिर तक जाने वाली मुख्य गली नाकामी से दोरी में उपहार बेचने वाली दुकानें देख रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 11वें पाठ की बातचीत।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने ताम से कहा,
2: कोनो टी-शर्ट मीते?
1: ये टी-शर्ट देखो,
3: निंजा ते काइतारु,
1: निंजा लिखा हुआ है।
0: ताम ने टी-शर्ट की तरफ देखकर कहा,
3: आ, निंजा!
1: अरे वाह, निंजा!
0: फिर दुकानदार की आवाज आई,
4: इराशाइमासे,
0: आइए आइए।
1: ताम ने दुकानदार से पूछा,
3: सुमिमासे, ओमामोरी वा अरिमासु का?
1: माफ कीजिए, तावीज है।
0: दुकानदार ने जवाब दिया,
4: चोट्टो कोको नी वा अरिमासेन ने,
0: यहाँ तो नहीं है।
1: फिर मिया ने ताम को बताया,
3: ताम, ओमामोरी वा ओतेरा नी आरियो।
1: ताम, तावीज मंदिर में मिलते हैं।
0: उसके बाद ताम ने पूछा,
5: ओतेरा देस का?
1: मंदिर में।
0: फिर मिया ने कहा,
3: इकिमाशो,
1: चलो।
0: दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जापानी तावीज क्या होते हैं। जापानी भाषा में इन्हें ओमामोरी कहते हैं। ये आमतौर पर शिंतो और बौद्ध धर्म के मंदिरों में मिलते हैं। इन्हें शुभ माना जाता है और लोग ये मानते हैं कि ये मुसीबतों से बचाते हैं।
1: दोस्तों, अब एक बार फिर सुन लेते हैं आज की बातचीत।
2: कोनो टी-शर्ट मीते, निंजा ते काइते अरु।
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
5: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: आज का मुख्य वाक्य है,
5: ओमामोरी वा अरिमासु का,
1: यानी तावीज है। इसे याद करके आप पूछ सकते हैं कि जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो है या नहीं।
0: इस वाक्य में
6: ओमामोरी
0: का अर्थ है तावीज। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है,
6: अरिमासु
0: है क्रिया
6: अरु
0: यानी होना का मास रूप, और उसके बाद लगा है का, जिससे वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि खरीदारी करते समय जो चीज आप ढूंढ रहे हो उसके नाम के बाद लगाना है कारक वा, और उसके बाद बोलना है
6: अरिमासु का।
0: तो सुनिए और दोहराइए,
6: अरिमासु का, ओमामोरी वा अरिमासु का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी पर्यटन केंद्र में कुछ ढूंढ रहा है।
7: すみません, 地図はありますか?
8: はい, こちらです।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले पर्यटक ने पूछा,
7: すみません, 地図はありますか?
0: माफ कीजिए, नक्शा है?
1: यहाँ
6: चीज
1: का अर्थ है नक्शा।
0: कर्मचारी ने उत्तर दिया,
8: हाई कोचिरा देस।
1: जी ये रहा।
0: अगर वो चीज उपलब्ध ना हो तो शायद आपको
6: अरिमासेन
0: यानी नहीं है जैसा सीधा उत्तर नहीं बल्कि थोड़ा घुमा फिरा कर जवाब मिलेगा, जैसे
6: चोटो
0: यानी जरा, या माफी मांगते हुए
6: सुमिमासेन
0: यानी माफ कीजिए।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
6: चिज़ु वा अरिमासु का? सुमिमासेन, चिज़ु वा अरिमासु का?
1: अब मान लीजिए आप जापान की कोई यादगार चीज खरीद कर ले जाना चाहते हैं और जापानी हाथ का पंखा ढूंढ रहे हैं।
0: हाथ के पंखे को जापानी भाषा में कहते हैं
6: सेंस, सेंस।
0: तो वाक्य में पहले सुमिमासेन लगाकर पूछने की कोशिश कीजिए।
8: सुमिमासेन, सेंस वा अरिमासु का? सुमिमासेन, सेंस वा अरिमासु का?
1: अब मान लीजिए कि आप पूछना चाहते हैं कि निंजा टी शर्ट है या नहीं। टी शर्ट को

0: कहते हैं।
1: टी शर्ट्स।
0: निंजा टी शर्ट बोलने के लिए बीच में कारक नो लगाकर बनेगा।
1: निंजा नो टी शर्ट्स। निंजा नो टी शर्ट्स।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？
3: अब बारी है आज के सहज वाक्य की। आप भी याद कर लीजिए।
4: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
0: का अर्थ है आइए आइए या स्वागत है। जब भी कोई ग्राहक किसी दुकान में जाता है उसका इस अभिवादन से स्वागत किया जाता है।
3: तो इसे अलग अलग आवाजों में सुन लेते हैं।
5: いらっしゃいませ।
6: いらっしゃいませ।
5: いらっしゃいませ।
0: और अब एक बार फिर सुनते हैं आज की बातचीत।
7: この T シャツ見て。忍者って書いてある。ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
7: すみません。お守りはありますか？
8: ちょっとここにはありませんね。
7: ダム、お守りはお寺にあるよ。
9: お寺ですか？
7: 行きましょう。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
3: अब समय है अंश घूमे मिया के साथ का। आज हम बताएंगे टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल आसाकुसा के बारे में, जहां ताम मिया के साथ गई थी।
0: आसाकुसा टोक्यो के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। वहां कामिनारी मोन है, जो सेंसोजी मंदिर का प्रवेश द्वार है। बड़ी सी लाल कंदील उस द्वार की पहचान है। वहीं से मुख्य भवन तक की 250 मीटर लंबी नाकामिसे गली शुरू हो जाती है, जिसके दोनों ओर बहुत सारी दुकानें हैं।
3: इन दुकानों में उपहार, मिठाइयां और दूसरी तरह तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे हाथ से बने चावल के गर्मा गर्म पापड़ या आजुकी दानों के मीठे पेस्ट से भरी निंग्यो याकी। वहाँ टी शर्ट, हाथ के पंखे और चॉपस्टिक्स भी मिलते हैं।
0: नाकामिसे गली के अंत में सेंसोजी मंदिर का मुख्य भवन है। टोक्यो स्काई ट्री भी पास ही है, वहाँ पैदल जा सकते हैं।
3: बहुत सारे पर्यटक इन दोनों जगहों पर एक ही दिन में जाते हैं। आपको अगर मौका मिले तो इस क्षेत्र में टहलने का आनंद जरूर लीजिएगा।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में ताम मंदिर से तावीज खरीदेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। जापान की हुकूमत ने एक बिल की मंजूरी दी है जो बुनियादी तौर पर असर नौ समाहत के अदालती फैसलों के खिलाफ इस्तगासा को अपील करने से रोक देगा। जुमे के रोज़ काबीना के इजलास में जाब्ताए फौजदारी में नजरसानी के मुसव्वदे की मंजूरी दी गई। इस्तगासा को अपील दायर करने की इजाज़त सिर्फ उस सूरत में मिलेगी जब उनके पास काफ़ी बुनियादें मौजूद हों। बिल के तहत इस्तगासा को बिला ताखीर यह बताने की ज़रूरत है कि आया उन्होंने अपील दायर कर दी है या नहीं, और अगर ऐसा किया गया है तो क्यों। जब अपीलें दायर कर दी जाएं तो अदालतों को एक साल के अंदर ये तय करने की कोशिश करनी चाहिए कि आया इन्हें मंजूर करना है या मुस्तरद। ये बिल एक नई शिक शामिल करेगा जिसके तहत जजों को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो इस्तगासा को असरे नौ समाअत के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की वजूहात से मुतालिक शवाहिद जाहिर करने का हुक्म दें। मुसव्वदा कानून में ये भी कहा गया है कि जजों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस्तगासा के ज़रिए ज़ाहिर किए जाने वाले शवाहिद का दायरा

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 15 मई शुक्रवार रात 11:30 बजे वायला कावानो और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने शुक्रवार दोपहर को प्रीति भोज पर मुलाकात की। ट्रंप शुक्रवार को ही अपनी चीन यात्रा संपन्न कर अमरीका लौट जाएंगे। दोनों नेताओं ने मध्यवर्ती बीजिंग में स्थित जोंग नानहाई परिसर में मुलाकात की, जहां चीनी नेताओं के कार्यालय स्थित हैं। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि बृहस्पतिवार को शिखर बैठक के दौरान ट्रंप और शी ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें चीन में अमरीकी व्यवसायों के लिए व्यापक पहुंच और अमरीका में अधिक चीनी निवेश शामिल है। चीन का कहना है कि व्यापार वार्ता में प्रगति हुई है। फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि शी ने 200 बोइंग जेट विमानों का ऑर्डर देने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने शी के हवाले से कहा कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला देखना चाहते हैं और वे ईरान को सैन्य उपकरण उपलब्ध नहीं कराएंगे। ट्रंप ने इसे एक बड़ी बात बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि शी ने इस बात पर जोर दिया कि ताइवान का मुद्दा चीन अमरीका संबंधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शी ने चेतावनी दी कि अगर इस मुद्दे में लापरवाही बरती गई तो दोनों देशों के बीच टकराव और यहां तक कि संघर्ष भी हो सकता है, जिससे समग्र संबंध गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। अमरीका की घोषणा में ताइवान का उल्लेख नहीं किया गया। जापान सरकार प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर बैठक के बारे में फोन पर

बातचीत कराने की व्यवस्था कर रही है। सरकार चाहती है कि ये बातचीत ट्रंप के शुक्रवार को बीजिंग से रवाना होने के बाद हो। जापान सरकार के एक सूत्र का कहना है कि टोक्यो ये जानने के लिए उत्सुक है कि अमेरिका और चीन ने ताइवान जैसे क्षेत्रीय मुद्दों तथा दुर्लभ धातुओं पर चीनी निर्यात प्रतिबंधों के संबंध में क्या चर्चा की। एनएचके को पता चला है कि जापान के रक्षा मंत्रालय ने फिलीपींस को सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों के निर्यात के उद्देश्य से एक अध्ययन शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार मनीला ने इस महीने की शुरुआत में टाइप 88 मिसाइलों को हासिल करने में अपनी रुचि व्यक्त की थी। सूत्रों ने आगे बताया कि मंत्रालय थल आत्मरक्षा बल GSDF के मौजूदा शस्त्रागार से इन मिसाइलों के निर्यात पर विचार कर रहा है। GSDF टाइप 88 मिसाइलों का उपयोग उत्तरोत्तर बंद कर उन्हें एक नए मॉडल से बदलना चाहता है। टाइप 88 मिसाइलों की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। SDF कर्मियों ने अप्रैल से मई तक फिलीपींस में आयोजित एक अभ्यास में इस मिसाइल का उपयोग किया था। अमरीकी सेना ने भी इसमें भाग लिया था। यूक्रेन के आपात अधिकारियों का कहना है कि बृहस्पतिवार तक रूस द्वारा किए गए व्यापक हमलों में राजधानी कीव में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय आपात सेवा ने शुक्रवार को मृतकों की नई संख्या की घोषणा की। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि देश पर किए गए रूसी हमलों में 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें शामिल थीं। कीव के दारनित्स्की इलाके में एक मिसाइल हमले में एक अपार्टमेंट इमारत नष्ट हो गई। पुलिस और बचावकर्मी मलबा हटाते और लापता लोगों की तलाश करते देखे गए। रूस का कहना है कि ये व्यापक हमले जवाबी कार्रवाई थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि उसने यूक्रेनी बलों के काम आने वाली ईंधन एवं परिवहन अवसंरचना तथा अन्य लक्ष्यों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान सरकार ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत किसी मामले की पुनः सुनवाई शुरू करने के अदालती फैसलों के खिलाफ अभियोजक बुनियादी तौर पर अपील नहीं कर सकेंगे। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में दंड प्रक्रिया संहिता के मसौदा संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत अभियोजक तभी अपील दायर कर सकेंगे जब उनके पास ऐसा करने का ठोस आधार होगा। इस विधेयक के तहत अभियोजकों को बिना विलंब ये खुलासा करना होगा कि क्या उन्होंने अपील दायर की है और अगर की है तो क्यों। अपील दायर होने पर अदालतों को एक वर्ष के भीतर ये तय करना होगा कि अपील स्वीकारी जाए या नहीं। इस विधेयक में एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों को दोबारा सुनवाई के अनुरोधों के कारणों से संबंधित साक्ष्यों का खुलासा करने के लिए अभियोजन पक्ष को आदेश देने का अधिकार होगा। विधेयक के मसौदे में ये भी कहा गया है कि न्यायाधीशों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभियोजकों द्वारा पेश साक्ष्यों का दायरा संकीर्ण न हो। सार्वजनिक किए गए साक्ष्यों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उल्लंघन करने वालों को एक वर्ष तक की कारावास की सजा या 5,00,000 येन यानी करीब $3,100 तक का जुर्माना हो सकता है। मसौदे में संशोधित कानून के लागू होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर हर 5 साल में एक बार समीक्षा किए जाने का आह्वान किया गया है। होंडा मोटर को वित्त वर्ष 2025 में भारी सामूहिक घाटा हुआ है जिसका मुख्य कारण कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन रणनीति में संशोधन है। इस जापानी वाहन कंपनी का कहना है कि सार्वजनिक होने के बाद से ये पहली बार है जब उसकी वार्षिक आय में घाटा हुआ है। वित्त वर्ष 2025 के लिए परिचालन घाटा 414.3 अरब येन यानी $2.6 अरब रहा। शुद्ध घाटा 423.9 अरब येन रहा। होंडा को सबसे अधिक नुकसान ईवी योजनाओं को रद्द करने, ईवी मॉडलों को बाजार में न उतारने और उत्तर अमेरिका में परियोजनाओं को रोकने के फैसले से हुआ है। अमेरिकी शुल्कों का भी कंपनी के मुनाफे पर बुरा असर पड़ा। होंडा का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में उसे लाभ होने की उम्मीद है। सुजुकी मोटर का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 439.2 अरब येन यानी लगभग $2.8 अरब पहुंच गया। भारत में मजबूत बिक्री इस उछाल के प्रमुख कारणों में से एक रही। जापान की इस वाहन निर्माता कंपनी ने बृहस्पतिवार को मार्च में समाप्त कारोबारी वर्ष के वित्तीय परिणाम घोषित किए। कंपनी ने बताया कि आमदनी बढ़कर लगभग 63 खरब येन यानी लगभग $40 अरब रही, जो वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 8% अधिक है। शुद्ध लाभ में 5.6% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि न केवल सुजुकी के मुख्य बाजार भारत में बल्कि जापान, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों में भी मोटर वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी के कारण हुई। कंपनी अध्यक्ष सुजुकी तोशिहिरो ने कहा कि पश्चिम एशिया में स्थिति बेहद अनिश्चित है, लेकिन मोटर वाहनों के उपयोग के तरीके में बड़े बदलाव आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी को इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए तुरंत कदम उठाने चाहिए।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 11वें पाठ में हम पूछना सीखेंगे कोई चीज उपलब्ध है या नहीं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। आज वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ आसाकुसा आई है। दोनों सेंसोजी मंदिर तक जाने वाली मुख्य गली नाकामिसे दोरी में उपहार बेचने वाली दुकानें देख रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 11वें पाठ की बातचीत।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने ताम से कहा,
2: कोनो टी शर्ट मीते,
1: ये टी शर्ट देखो,
2: निंजा ते काइते अरु,
1: निंजा लिखा हुआ है।
0: ताम ने टी शर्ट की तरफ देखकर कहा,
3: आ, निंजा,
1: अरे वाह निंजा।
0: फिर दुकानदार की आवाज आई,
4: इराशाई मासे,
0: आइए आइए।
1: ताम ने दुकानदार से पूछा,
3: सुमिमासे, ओमामोरी वा अरिमासु का,
1: माफ कीजिए तावीज है।
0: दुकानदार ने जवाब दिया,
4: चोट्टो कोको नी वा अरिमासेन ने,
0: यहाँ तो नहीं है।
1: फिर मिया ने ताम को बताया,
3: ताम ओमामोरी वा ओतेरा नी आरियो,
1: ताम तावीज मंदिर में मिलते हैं।
0: उसके बाद ताम ने पूछा,
3: ओतेरा देस का,
1: मंदिर में।
0: फिर मिया ने कहा,
2: इकिमाशो,
1: चलो।
0: दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जापानी तावीज क्या होते हैं। जापानी भाषा में इन्हें ओमामोरी कहते हैं। ये आमतौर पर शिंतो और बौद्ध धर्म के मंदिरों में मिलते हैं। इन्हें शुभ माना जाता है और लोग ये मानते हैं कि ये मुसीबतों से बचाते हैं।
1: दोस्तों अब एक बार फिर सुन लेते हैं आज की बातचीत।
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: ओमामोरी वा अरिमासु का,
1: यानी तावीज है। इसे याद करके आप पूछ सकते हैं कि जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो है या नहीं।
0: इस वाक्य में
6: ओमामोरी
0: का अर्थ है तावीज। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है,
6: अरिमासु
0: है क्रिया
6: अरु
0: यानी होना का मास रूप, और उसके बाद लगा है का जिससे वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि खरीदारी करते समय जो चीज आप ढूंढ रहे हो उसके नाम के बाद लगाना है कारक वा और उसके बाद बोलना है
6: अरिमास का।
0: तो सुनिए और दोहराइए,
6: अरिमास का, ओमामोरी वा अरिमास का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी पर्यटन केंद्र में कुछ ढूंढ रहा है।
7: すみません, 地図はありますか?
8: はい, こちらです।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले पर्यटक ने पूछा,
7: すみません, 地図はありますか?
0: माफ कीजिए, नक्शा है।
1: यहाँ
6: चीज
1: का अर्थ है नक्शा।
0: कर्मचारी ने उत्तर दिया,
8: हाई कोचिरा देस।
1: जी ये रहा।
0: अगर वो चीज उपलब्ध ना हो तो शायद आपको
6: अरिमासेन
0: यानी नहीं है जैसा सीधा उत्तर नहीं बल्कि थोड़ा घुमा फिरा कर जवाब मिलेगा, जैसे
6: चोटो
0: यानी जरा, या माफी मांगते हुए
6: सुमिमासेन
0: यानी माफ कीजिए।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
6: चीज़ वा अरिमास का? すみません。 地図はありますか?
1: अब मान लीजिए आप जापान की कोई यादगार चीज खरीद कर ले जाना चाहते हैं और जापानी हाथ का पंखा ढूंढ रहे हैं।
0: हाथ के पंखे को जापानी भाषा में कहते हैं
6: सेंस। सेंस।
0: तो वाक्य में पहले सुमिमासेन लगाकर पूछने की कोशिश कीजिए।
3: सुमिमासेन, सेंस वा अरिमास का? सुमिमासेन, सेंस वा अरिमास का?
1: अब मान लीजिए कि आप पूछना चाहते हैं कि निंजा टी शर्ट है या नहीं। टी शर्ट को कहते हैं
6: टी शर्ट।
1: निंजा टी शर्ट बोलने के लिए बीच में कारक नो लगाकर बनेगा
6: निंजा नो टी शर्ट। निंजा नो टी शर्ट।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
7: すみません निंजा नो टी शर्ट वा अरिमास का? すみません निंजा नो टी शर्ट वा अरिमास का?
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, आप भी याद कर लीजिए।
9: いらっしゃいませ।
6: いらっしゃいませ
1: का अर्थ है आइए आइए या स्वागत है। जब भी कोई ग्राहक किसी दुकान में जाता है उसका इस अभिवादन से स्वागत किया जाता है।
0: तो इसे अलग अलग आवाजों में सुन लेते हैं।
10: いらっしゃいませ।
11: いらっしゃいませ।
10: いらっしゃいませ।
1: और अब एक बार फिर सुनते हैं आज की बातचीत।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
9: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム？お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब समय है अंश घूमे मिया के साथ का। आज हम बताएंगे टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल आसाकुसा के बारे में, जहां ताम मिया के साथ गई थी।
1: आसाकुसा टोक्यो के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। वहाँ कामिनारी मोन है जो सेंसोजी मंदिर का प्रवेश द्वार है। बड़ी सी लाल कंदील उस द्वार की पहचान है। वहीं से मुख्य भवन तक की 250 मीटर लंबी नाकामिसे गली शुरू हो जाती है, जिसके दोनों ओर बहुत सारी दुकानें हैं।
0: इन दुकानों में उपहार, मिठाइयाँ और दूसरी तरह तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे हाथ से बने चावल के गर्मा गर्म पापड़ या आजुकी दानों के मीठे पेस्ट से भरी निंग्यो याकी। वहाँ टी शर्ट, हाथ के पंखे और चॉपस्टिक्स भी मिलते हैं।
1: नाकामिसे गली के अंत में सेंसोजी मंदिर का मुख्य भवन है। टोक्यो स्काई ट्री भी पास ही है, वहाँ आप पैदल जा सकते हैं।
0: बहुत सारे पर्यटक इन दोनों जगहों पर एक ही दिन में जाते हैं। आपको अगर मौका मिले तो इस क्षेत्र में टहलने का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम मंदिर से तावीज खरीदेंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। जापान की हुकूमत ने एक बिल की मंजूरी दी है जो बुनियादी तौर पर असर नौ समाहत के अदालती फैसलों के खिलाफ इस्तगासा को अपील करने से रोक देगा। जुमे के रोज़ काबीना के इजलास में ज़ाब्ताए फौजदारी में नजरसानी के मुसव्वदे की मंजूरी दी गई। इस्तगासा को अपील दायर करने की इजाज़त सिर्फ उस सूरत में मिलेगी जब उनके पास काफ़ी बुनियादें मौजूद हों। बिल के तहत इस्तगासा को बिला ताखीर यह बताने की ज़रूरत है कि आया उन्होंने अपील दायर कर दी है या नहीं, और अगर ऐसा किया गया है तो क्यों। जब अपीलें दायर कर दी जाएं तो अदालतों को एक साल के अंदर ये तय करने की कोशिश करनी चाहिए कि आया इन्हें मंजूर करना है या मुस्तरद। ये बिल एक नई शिक शामिल करेगा जिसके तहत जजों को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो इस्तगासा को असर नौ समाअत के खिलाफ दरख्वास्तों की वजूहात से मुतालिक शवाहिद जाहिर करने का हुक्म दें। मुसव्वदा कानून में यह भी कहा गया है कि जजों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस्तगासा के ज़रिए जाहिर किए जाने वाले शवाहिद का दायरा गैर माकूल हद तक महदूद नहीं है। ज़ाहिरशुदा शवाहिद को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। खिलाफवर्जी करने वालों को एक साल तक की कैद या 5 लाख येन तक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा जो लगभग $3,100 बनते हैं। मुसव्वदे में तरमीम शुदा कानून के नफाज के बाद अगर ज़रूरी समझा जाए तो हर 5 साल में एक बार नजरसानी का कहा गया है। होंडा मोटर ने माली साल 2025 के लिए भारी ग्रुप नुकसान दिखाए हैं जिसकी बड़ी वजह इसकी ईवी हिकमत अमली में कमी है। इस जापानी कारसाज कंपनी का कहना है कि हिस्स मंडी में अंदराज के बाद ये पहला मौका है जब इसकी पूरे साल की आमदनी खसारे में चली गई है। मार्च में ख़त्म होने वाले साल के लिए पैदावारी नुकसान 414.3 बिलियन येन यानी $2.6 बिलियन रहा। खालिस नुकसान 423.9 बिलियन येन तक पहुंच गया। होंडा के मुकम्मल तौर पर बरकी गाड़ियां बनाने के अजायम मुअत्तल करने, ईवी मॉडल्स को मनसूख करने और शुमाली अमरीका में प्रोजेक्ट्स को मुअत्तल करने के फैसले से सबसे ज़्यादा नुकसानात हुए। अमरीकी टैरिफ इकदामात ने भी कंपनी की खालिस आमदनी को मुतासर किया। होंडा ने आइंदा के बारे में तवक्को जाहिर की है कि रवा माली साल के लिए आमदनी मुनाफे की राह पर लौट आएगी। सुजुकी मोटर का गुज़िश्ता माली साल के लिए खालिस मुनाफा 439.2 बिलियन येन यानी तकरीबन $2.8 बिलियन की रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुंच गया। भारत में ज़बरदस्त फरोख्त इस इजाफे की वजूहात में शामिल थी। जापानी कारसाज कंपनी ने मार्च में ख़त्म होने वाले कारोबारी साल के लिए मालियाती नतायज का जुमेरात को ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि आमदनी बढ़कर तकरीबन 6.3 ट्रिलियन येन यानी तकरीबन $40 बिलियन हो गई जो साल बसाल के एतबार से 8% ज़्यादा है। खालिस मुनाफे में 5.6% इजाफा हुआ। ये इजाफा ना सिर्फ भारत में सुजुकी की मरकज़ी मंडी बल्कि जापान, पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक में ऑटोमोबाइल की ज़्यादा फरोख्त की वजह से हुआ।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।